0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে নবীন সক্সেনা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित

0: टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Bharat Taxi is a digital mobility platform based on the principles of cooperation, which gives shape to the concept of Sarthi Hi Malik. Under this model, taxi drivers are not merely service providers but are also participants and owners of the platform, enabling them to receive the benefits of economic empowerment, social security and ownership. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the business plenary session in London yesterday, Mr. Goyal said that it was heartening to interact with leaders from across sectors, united by a shared belief in the immense opportunities that lie ahead. He also invited businesses across both nations to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition for shared prosperity as CETA opened new frontiers for growth. In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The first

आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
5: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों

0: चीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा, मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত, 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a three-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Rubio also said the relationship between Prime Minister Modi and President Donald Trump is very close, adding that it is important for diplomacy. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force, hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a post on X, Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and that the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue, but warned that violence would receive a military response. The U.S. Central Command, CENTCOM, said American forces targeted Iranian missile and drone storage sites along with coastal radar installations. It said the strikes were carried out in response to what it described as an Iranian drone attack on a commercial cargo vessel traveling through the Strait of Hormuz. Mizoram has become the first among 16 states and 3 union territories to achieve 100% digitization of enumeration forms under the ongoing Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls, 3 days ahead of the 28th June deadline set by the Election Commission of India. According to officials, Mizoram had over 5.59 lakh electors during the last SIR in 2005. The number has increased to more than 8.75 lakh voters in 2025, including over 4.23 lakh males and 4.51 lakh female electors. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority has facilitated the first commercial export of geographical indication GI tagged Rewa Sundarja mangoes from Madhya Pradesh to the United Arab Emirates. Commerce and Industry Ministry said that this is a significant step in promoting India's unique agricultural products in global markets. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Mahe and in some parts of the Northeast India.
3: In football, Egypt has reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramim Rezalian was named player of the match. In another Group G match, Belgium defeated New Zealand 5-1 to finish at the top of the group. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12:10 हुए हैं। अब हम सैनिक भाइयों का कार्यक्रम आरंभ करते हैं।

समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे, यानी कि दिन के 1:10 पर गुंजन कार्यक्रम को लेकर, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम, दिन के 2:00 और 2:15 पर अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे यानी कि दिन के 2:30 पर नजराना कार्यक्रम को लेकर। नजराना कार्यक्रम के साथ ही आज का प्रसारण समाप्त होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की छोटी सी जानकारी। सैनिक भाइयों, आज के इस प्रसारण में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ।

मैं सीमा रावत आप सभी से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रसारण में अब प्रस्तुत है इस प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। गैंगस्टर फिल्म से सुनते हैं पहला गीत केके की आवाज में।

0: फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कुणाल गांजावाला की आवाज में। फिल्म का नाम है फुल एंड फाइनल।
1: Hey you guys, flowing on the flow. Mess with us, we throw you out the door. Bone with us, we smack you honk. F to the U to the F, K, funk.

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। सैनिक भाइयों, 27 जून को संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह आर डी बर्मन यानी हमारे प्यारे पंचमदा का जन्मदिन है। इस बेहद खास मौके पर आकाशवाणी परिवार और आप सभी सैनिक भाइयों की ओर से पंचमदा को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं और सादर नमन। पंचमदा, आपकी जादुई धुन आज भी हमारे दिल की धड़कन है। आइए उन्हें याद करते हुए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से किशोर कुमार की आवाज और पंचमदा के लाजवाब संगीत के साथ सजा ए बेहद खूबसूरत नगमा। गीतकार है मजरूर सुल्तानपुरी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात से पंचमदा के जादुई संगीत से सजा ये सदाबहार नगमा। सचमुच उनका संगीत आज भी हर दिल को थाम लेती है। आज उनके जन्मदिन के इस बेहद खास मौके पर हम एक बार फिर संगीत के इस महानायक हमारे प्यारे पंचमदा आर डी बर्मन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सादर नमन भेजते हैं। पंचमदा, आप हमेशा हमारे गीतों और यादों में जिंदा रहेंगे। इसके साथ आज का गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

सैनिक भाइयों, अगला कार्यक्रम है एक और अनेक, पर उस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल के कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह हमारा प्रसारण आरंभ होता है दिन के 12

12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। बारह बजकर 38 मिनट पर सबरंग कार्यक्रम और दिन के 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे दिन के 1:40 पर गीत का कार्यक्रम को लेकर। 1:40 पर शीर्षक संगीत कार्यक्रम दिन के 2:00 और 2:15 पर अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दिन के 2:30 पर गीत अपना धुन पर आई कार्यक्रम। गीत अपना धुन पर आई कार्यक्रम के साथ ही कल का प्रसारण समाप्त होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देता है, और जब आवाज में मिस्री जैसी मिठास और रूहानी सुकून हो तो समझ जाइए कि बात श्रेया घोषाल की हो रही है। आज हम बात करेंगे उसी आवाज की जिसने सरहदों को पार कर हर दिल में अपनी जगह बनाई।

सनी भाइयों, अभी आपने सुना हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से इस गीत को। आवाजें थी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की। सनी भाइयों, समझ गए होंगे आप, आज एक और अनेक कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे श्रेया घोषाल और सह कलाकारों के गाये गीत को। 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मी श्रेया का बचपन राजस्थान के रावलभाटा में बीता। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ से संगीत सीखा और पिता के सहयोग ने उनके सपनों को पंख दिया। उनकी असली पहचान तब हुई जब उन्होंने रियलिटी शो सारेगामापा का खिताब जीता। अगला गीत आइए सुनते हैं, कृष फिल्म से श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में।

कहते हैं कि जौहरी ही हीरे की परख जानता है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने जब श्रेया को सुना तो उन्हें अपनी फिल्म देवदास के लिए पारो की आवाज मिल गई। 16 साल की उम्र में श्रेया ने बैरी पिया जैसे कठिन गानों को इतनी सादगी से गाया कि पूरी इंडस्ट्री दंग रह गई। इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला और यहां से शुरू हुआ एक कभी ना खत्म होने वाली सुरीला सफर। अगला गीत आइए सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में।

श्रेया घोषाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रही, उन्होंने बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित 20 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। चाहे आमी तो आमी जे तुमार जैसा क्लासिकल गाना हो या चिकनी चमेली जैसा धमाकेदार आइटम नंबर, श्रेया ने हर शैली में खुद को साबित किया है। अगला गीत आइए सुनते हैं, बॉडीगार्ड फिल्म से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

श्रेया घोषाल सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि करोड़ों संगीत प्रेमियों की प्रेरणा है। उनकी आवाज में वो जादू है जो आज के शोर शराबे वाले दौर में भी मन को शांति देता है। हम यही दुआ करते हैं कि उनकी ये सुरीली विरासत यूं ही बढ़ती रहे। मिस्त्री जैसी घुली इस आवाज का जादू हमारी यादों में हमेशा ताजा रहे, इसी उम्मीद के साथ कि संगीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, टॉयलेट, एक प्रेम कथा फिल्म से, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में।

सैनिक भाइयों, अब से लेकर 1:40 तक हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुना जा सकेगा मीडियम वेव 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुंजन। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है मासूम, आवाज है आरती मुखर्जी की। इस फिल्म को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने, गीत लिखे हैं गुलजार ने।

गुंजन कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। इस फिल्म को संगीत से सजा है राम लक्ष्मण ने और गीत लिखे हैं देव कोहली ने।

गुंजन कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म से शैलेंद्र सिंह की आवाज में। इस फिल्म को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने, गीत लिखे हैं मजरूर ने।

गुंजन कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं सपने फिल्म से, आवाजें हैं हरिहरन सिंह और साधना सरगम की। इस फिल्म को संगीत से सजाए ए आर रहमान ने और गीत लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

हरिहरन और साधना शर्म के गाए इस गीत के साथ ही आज का गुंजन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनी भाइयों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पंजाबी में कुछ गीत, तो लीजिए सुनिए ये पहला प्रादेशिक संगीत। आवाज है हंसराज हंस की।

0: Uttarakhand. During next 3 to 4 days, the Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Described Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी

0: क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
6: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today.

0: the business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। समाचारों के बाद एक बार फिर आप सभी का इस प्रसारण में मैं स्वागत करती हूं।

प्रस्तुत है इस प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म है सुपरस्टार, आवाजें हैं सुल्तान और रेखा की।

इसी गीत के साथ आज का नजराना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। 3 बजे से रिले किया जाएगा FM रेनबो के कार्यक्रम। आज का सैनिक भाई का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी दिन के 12:10 पर। तब तक के लिए मैं सीमा लेती हूँ इजाजत। जय हिंद।

आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो टॉक।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए, अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का अंक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं एफएम रेनबो 102.6 पर। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे और आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हम यहां करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। पर आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, इसमें कोशिश करते हैं कि इसमें आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं और हमारी कोशिश होती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। आज हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी से गहरा जुड़ा जरूर है। और साथ ही साथ सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तभी हम उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। तो विषय सुन लीजिए, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी दो रेडियो डॉक्टर्स और दोनों का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन बधाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। नमस्कार मैम, स्वागत।
1: धन्यवाद शालिनी जी। नमस्कार श्रोताओं।
0: और हमारे साथ हमारी दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर स्मृति सिंह, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्रेयी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति हमारे स्टूडियो में आपका।
2: थैंक यू, नमस्कार।

0: नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: श्रोताओं से पुनः एक बार ये रिक्वेस्ट करें कि आपको इस कार्यक्रम को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने मन की बात यानी आपको जो जो समस्याएं इससे रिलेटेड आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं उनको हमारे साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास सॉल्यूशंस हैं और वो आपको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान पूरी कोशिश करेंगे 4 बजे तक देने की। तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुमन बधाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो ये बताइए पीएमआर डिपार्टमेंट क्या है और ये क्या कार्य करता है?
2: पीएमआर डिपार्टमेंट, फिजियाट्री भी बोलते हैं, पुनर्वास, ये शुरुआती दौर में तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, दर्द, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इनके इलाज में ये सहायता करते थे। इस समय ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के किसी भी प्रकार या उसके बाद उसको कैसे समाज में पुनर्स्थापित करना है, चाहे वो उनकी वोकेशनल नीड हो या उनको वापस मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में वापस रीइंस्टेट करने का कार्य है, मुख्यतः लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसके बारे में ये हर तरह की कंडीशंस को ये कार्य करते हैं।
1: जी, तो बहुत कुछ आता होगा आपके इस जो विभाग के अंतर्गत, जिस तरह की भी आप बात कह रहे हैं, लोकोमोटर डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हो सकते हैं और बहुत कारणों से हो सकते हैं, तो उन कारणों की बात भी हम जरूर करेंगे कार्यक्रम में। पर डॉक्टर स्मृति, आपके हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर?
0: इसको हम दो तरीके से बांट, सबसे पहले ऑफकोर्स जो जन्म लेता है बच्चा वो डिफरेंटली एबल होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी उसमें भी होते हैं, लेकिन डिफरेंटली एबल कैटेगरी जन्म से, लिंग से, इन सब चीजों से डिसाइड नहीं होती है, ये एज बैरियर भी नहीं होती है, किसी एज में भी किसी को भी हो सकती है, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है। और रीजन तो हम सब जानते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंटली एबल लोग हो जाते हैं। हम इसको एक विजिबल कैटेगरी होती है जो आप देख पाते हो, लोकोमोटिव लाइक यू नो विजुअली चैलेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी नॉन विजुअल कैटेगरी होती है जिसमें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे हीमोफीलिया हुआ, जैसे वो लोग जो सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो लोग जो डाउन सिंड्रोम है, ये कैटेगरी हमें दिखती नहीं है, तो हम इस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं।
1: जी, पहले गीत सुनेंगे और फिर ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो हमारे देश में उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुमन बधाल और डॉक्टर स्मृति सिंह। तो हम बात कर रहे थे कि कौन डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉल करता है। डॉक्टर स्मृति ने हमें बताया कि बहुत तरीके से चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो बाय बर्थ हो चाहे बाय एक्सीडेंट हो। तो डॉक्टर सुमन ये बताएं कि कौन कौन से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या हर तरह की कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं या उसमें भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई कैटेगरीज होती हैं?
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफाई में कर रखा है जिसमें 21 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड हैं, दे कैन अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी। इनको जैसे कि मैडम ने भी बताया कि हीमोफीलिया, ब्लड डिसऑर्डर्स वाले हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, देन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम को भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है, देन हियरिंग है, लो विजन, ब्लाइंडनेस है और भी इस तरह करके तकरीबन स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर जो कि आजकल लेटली इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दैट इज ऑल्सो सेरेब्रल पाल्सी। इस तरह तकरीबन 21 कैटेगरीज हैं जो गैजेट में नोटिफाइड हैं, वो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
0: तो ये अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये पहचान लिया कि आप उस कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन इसके लिए क्या स्पेशल कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई प्रोसीजर है या कोई वेबसाइट है, कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है या फिजिकली फॉर्म सबमिट करना होता है, ये थोड़ा सा बताएं।
1: जी बिल्कुल, इस समय हमारी भारत सरकार ने बिल्कुल विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं जिनको ये परेशानी है तो वो सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है swablamban.com करके, जिसमें ये लोग अपने एरिया के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो जो नोटिफाइड हॉस्पिटल है उसमें 3 अस्पतालों की लिस्ट आ जाती है निकल के, जिसमें से चूज कर सकते हैं मरीज को जो पास पड़ता है या जो उनकी एरिया में आता है तो उसके हिसाब से वो हॉस्पिटल उनके प्रिंट होके आ जाता है उनके एप्लीकेशन पे। फिर फिजिकली जाके उनको उस अस्पताल में उस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या जो भी वहां पे काउंटर होता है उनसे जाके मिलना पड़ता है, फिर वो आगे का प्रोसेस उनको समझाते हैं और हर जिसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उस कंसर्न विभाग को वो उनको भेजते हैं।
0: जी, जो मेरा अगला प्रश्न था वो हमारे श्रोता ने यहाँ पूछ लिया है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। लिखने वाले हैं अमृत, कहाँ से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है, पर उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सुमन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं कि क्या आप प्रोवाइड करते हैं।
1: जी मैं बिल्कुल इनको बताना चाहूंगी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए अमृतपाल जी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर हम कहें तो कई प्रकार के उपकरण अप्लायंसेस होते हैं, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस। सफदरजंग विभाग में, पीएमआर विभाग में ऑर्थोसिस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट अभी हो गए हैं। प्रोस्थेसिस की कुछ नॉमिनल कॉस्ट है जो भारत सरकार के या जो ऑलरेडी नोटिफाइड लिस्ट है। कुछ एनजीओ

0: they have to do by various channels.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर स्मृति, यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कितना लगता है आपको कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
2: अभी के आजकल के जमाने में CSR 2% ऑफ द कंपनी इनकम, जो जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके अपने भी फाउंडेशंस हैं और वो कंपनी के थ्रू भी हर डिसेबल को, आप जैसे मैम ने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बताया, विजुअली चैलेंज के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कंप्यूटर हुआ और सॉफ्टवेयर हुए, स्मार्टफोन हुआ, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनसे हम मिलते हैं और बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की फैसिलिटी CSR एक्टिविटी के अंदर देती हैं. तो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन सारी बड़ी कंपनी में आप देखोगे
1: CSR की एक्टिविटीज हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर स्मृति. हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, फोन लाइन पर है, आइए सुन लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं. हेलो
3: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में है, प्रश्न कर लें. जी
3: हाँ जी मैम, मैं निखिल बात कर रहा हूँ गुजरात से.
1: हाँ जी,
3: मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं सरकार की क्या क्या योजना रहेगी जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए. मैम
1: जी, अभी ये बात हमें डॉक्टर सुमन बता रही थी, डॉक्टर बताएं इनको फिर से कि क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, यही जानना चाहते हैं.
4: जी निखिल जी, देखिए सरकार की, क्योंकि वो पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है उसको हम एज ए होलिस्टिक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उसको कंसिडर करना चाहिए. तो हमें पहले डिसाइड करना चाहिए कि उसको चाहिए क्या, डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, उनकी जरूरतें कैसी हैं और किस अवस्था में जाके डिसेबिलिटी है. उनकी एजुकेशनल नीड हो सकती है, उनकी वोकेशनल नीड हो सकती है, उनको एक यू कैन से कि एक डेडिकेटेड इनकम चाहिए अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वोकेशनल नीड हो सकती है, मॉनेटरी नीड्स हो सकती हैं. तो उस इंडिविजुअल को ऐसे होलिस्टिकली आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के बाद उसके माध्यम से ये सारी उनका बेनिफिट जो है उसको पर्सन को मिल सकता है.
1: जी धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया. और इस तरह के हमारे श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे रेडियो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमन हैं और डॉक्टर स्मृति हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं. हम जो आज बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको दी जाती है सरकार द्वारा और एनजीओ द्वारा, वो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बता रहे हैं. तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे. हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैम,
1: कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं अमृतपाल सिंह बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से।
1: जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं आज इस विषय पर?
2: हाँ मैम, जैसे मेरे एक नॉन है, उनकी एक आंख से बिल्कुल नहीं उन्हें दिखाई देता, तो इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर रहता है?
1: जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है डॉक्टर सिंघानिया का, कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, बताएं।
3: धन्यवाद अमृतपाल जी सवाल पूछने के लिए। आपने जैसे बताया कि वो विजुअली चैलेंज है या उनका
1: एक आंख से
3: उनका दिक्कत है,
2: तो, जीरो है।
3: हाँ, तो इसका एक पोर्टल है जो सरकार ने ई सुविधा दी है, swavalamban.com करके। उसमें वहाँ उनको आधार बेस्ड ये सिस्टम है, ताकि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक यूनिफाइड डेटा सरकार को चाहिए, जिससे कि सारी सुविधाएं उनको बेनिफिट जो है इस UDID कार्ड के माध्यम से उनको दी जाए। तो पहले इनको रजिस्टर करना पड़ेगा swavalamban.com पे, उसके बाद इनके आधार बेस के हिसाब से इनका जो एरिया है उसके आसपास इनको 3 अस्पताल प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3 करके इनके लिस्ट में आ जाएगा। तो जो भी अस्पताल इनको डेजिग्नेट किया गया है उस पोर्टल के माध्यम से, वहां जाके विजिट करें, कोऑर्डिनेट करें, और वहां उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा।
1: तो बिल्कुल धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। और आप जैसे और बहुत सारे श्रोता होंगे जो इस बारे में जानना चाहते होंगे, आपके माध्यम से, आपके प्रश्न के माध्यम से उनको भी जवाब मिल गया। हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है, नरेंद्र शर्मा जी हैं किस्तवाड़ जम्मू कश्मीर से। इन्होंने हमें अपने बेटे के बारे में लिखा है कि मेरा पुत्र है जिसकी उम्र 14 साल है, और अभी मेरा बेटा सामान्य स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत है, और वो जन्म से उसको हियरिंग वो इम्पेयर्ड है, 90% हियरिंग लॉस है। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या उसको सामान्य स्कूल में पढ़ने दिया जाए या उसको कोई स्पेशल स्कूल में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा लिखा है, पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, समय की थोड़ी कमी है। ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की क्या इनको पढ़ाई कराई जा सकती है कि जिससे वो पैरों पर खड़ा हो सके, और उनको आगे किसी और स्कूल में डाला जाए जिससे कि उनकी आगे की जो जर्नी हो पढ़ाई की भी और जॉब की, वो इजी हो सके। इस तरह के कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या डॉक्टर स्मृति?
4: या सबसे पहले नरेंद्र जी, कोई घबराने की बात नहीं है, और आपका बच्चा अभी सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है, और मैं यही आपसे आशा रखूंगी कि उसकी आप सामान्य स्कूल में ही पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। थोड़े चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, आपके जम्मू एरिया में भी हैं, काफी लोग हैं, और वो हेल्प भी करते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात है, आइडेंटिफाइड जॉब है जो विजुअली चैलेंज, हेयरिंग इम्पेयर्ड या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ लोग कर सकते हैं, तो उस तरीके के जॉब सरकार ने बताए हुए हैं, और उनमें बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें HH के लिए सीट रिजर्व रहता है, तो उसमें आपका बच्चा सामान्य लोगों की तरह जॉब भी कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, और आप सामान्य स्कूल में ही अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी।
1: चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न किया है नरेश जी, और आपको जवाब भी मिल गया डॉक्टर स्मृति की तरफ से। और हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो।
5: हेलो
1: जी, आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
5: वीपी सिंह बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली से।
1: जी वीपी सिंह जी, आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे आज इस विषय पर?
5: दो एक्सपर्ट हैं, दोनों से एक एक सवाल है।
1: हाँ जी बताएं।
5: जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है जो मैडम है, उनसे सवाल ये है मेरा कि जो पहले से ही विजुअली चैलेंज पर्सन है और मेडिकल कार्ड भी है उसके पास, कंसेशन कार्ड होते हैं
1: जी,
5: रेलवे में फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, जो भी कार्ड बना रही है जो टिकट बुकिंग करने के लिए, वो UID कार्ड होना जरूरी है, तो कहाँ से बन सकता है ये?
1: अभी मैडम ने बताया था UID कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें, आप शायद लेट जुड़े होंगे कार्यक्रम में।
3: UDID कार्ड के लिए आपको swavalamban.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। एक आधार बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपका आधार से और आपके फोन से लिंक है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है आपके फोन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे आपको 3 अस्पताल की लिस्ट दी जाएगी, तो जिसमें से जो भी अस्पताल आपको बेस्ट सुटेबल लगता है आप वहाँ विजिट करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए धन्यवाद वीपी सिंह जी, आपका प्रश्न हम तक पूरा नहीं पहुँचा लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो।
6: हेलो
1: जी।
6: मैं 80 साल उम्र है मेरी साहब
1: जी, नाम बता दें।
6: जगजीत सिंह है मेरा नाम।
1: अच्छा जी जगजीत सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
6: 218 में मेरी आंखों का इलाज हुआ था। मेरी रोशनी उस टाइम 20% थी, अब बिल्कुल कम हो गई है रोशनी। कोई हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से?
4: हाँ जी सर, 80 साल के लोगों को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, आप जिस एरिया में लोकेटेड है उसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जो स्पेशल स्कूल के हैं या नॉन गवर्नमेंट एनजीओस के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, क्योंकि इट्स वेरी मतलब एज रिलेटेड डिसेबिलिटी तो आती है। अब जो 75 साल तक सब साल तक जी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आंखों से, अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, एज सिंपल एज दिस, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है। तो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रन किया जाता है और उनको सुविधा दी जाती है जो मुफ्त में किया जाता है, तो आप जैसे लोगों के लिए भी सुविधा है।
1: इसको कैसे किया जा सकता है अवेल?
4: इसको अवेल करने के लिए आप जिस एरिया में है उस एरिया के जो भी आपके आप पता करो कि उनके आपके एरिया में गवर्नमेंट या एनजीओ से रिलेटेड कौन से स्पेशल स्कूल्स हैं, कौन से स्पेशल सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाओगे वो सब सुविधाएं देते हैं। बहुत बार बहुत सारे एनजीओस को आप कांटेक्ट करोगे पर्सनली भी, जो आपके स्टेट में होंगे, तो वो आपके घरों पर भी आके आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं।
1: जी जी, तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिर्फ थोड़ा सा पता करना है, आपको सही जगह पर पहुंचना है। हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, पवन ने लिखा है उत्तराखंड से कि CWSN जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए वर्तमान में कोई एजुकेशन फैसिलिटी भी राज्य या केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है? डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे।
3: जी बिल्कुल, जैसे कि इनका सवाल है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए बहुत सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखी है। तो हालांकि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है ये बहुत बाद में गैजेट में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसमें एक समग्र शिक्षा अभियान है जिसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं इन बच्चों के लिए दी गई हैं। एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए गए हैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इंक्लूसिव क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्पेशल एजुकेटर्स नॉर्मल क्लासरूम में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम का उनके नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के हिसाब से उनको एक आइसोलेटेड फीलिंग ना आए। इसके अलावा एक PME विद्या पोर्टल है, वो भी इन बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
1: जी डॉक्टर स्मृति, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने शुरू में बताया कार्यक्रम के कि आप एक केयर गिवर भी हैं, तो किस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की जो बात हो रही है, पवन जी पूछ रहे हैं, तो किन किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है?
4: हर डिसेबिलिटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैं अगर सबसे पहले तो ये हेल्थ प्रोग्राम है, तो मैं एजुकेशन को शॉर्ट में करके हेल्थ पर ज्यादा जाऊं।

0: पाऊंगी। ये एजुकेशन में ट्रांसपोर्ट से लेके और बहुत सारे रूल्स हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, और बहुत सारे सरकारी स्कूल में फॉलो भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर किसी भी वजह से, अवेयरनेस की वजह से, एक्ट नया है, 2016 एक्ट आया, फिर 2017 एक्ट आया लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो बहुत सारी चीजों की वजह से अभी चीजें ना बन रही हैं, एडजस्टमेंट में हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो एफएम रेनबो को बहुत सारा थैंक यू कि अवेयरनेस इस बारे में आ रहा है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में बहुत कम बात करते हैं। और उसमें इस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम होती है क्लास में, बच्चों को कहने को हम कह देते हैं कि समग्र शिक्षा होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, बहुत बार बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाता है तो कहीं का नहीं रह जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं है तो स्कूल रोज जाने की प्रॉब्लम है, कैसे जाएगा बच्चा, ये वाली सारी प्रॉब्लम है। तो अब जैसे सीएनजी लगा हुआ है पीछे, तो व्हील चेयर नहीं जा सकती है बच्चे की, बहुत बार बहुत तरीके की प्रॉब्लम है
1: जी, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी बात आपने बताई। और एक श्रोता जरूर वेट कर रहे हैं, तो हम पहले उनको ले लेते हैं, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जय किशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चैनल से।
1: जी जी अग्रवाल जी, बताएं
2: आपको। नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेजेस हमारे यहाँ दिल्ली में हैं, और बाहर के जो विकलांग लोग हैं बच्चे आके पढ़ते हैं, और जो दिल्ली के भी जो विकलांग दूर दूर रहते हैं, क्या उनके लिए कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, और अगर करते हैं तो किस आधार पे करते हैं?
1: कॉलेजेस की बात की उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या हॉस्टल की जब बात करते हैं तो हॉस्टल में इनके लिए कुछ अलग से कोटा होता है या कुछ अलग से ध्यान रखा जाता है? डॉक्टर स्मृति बता रहे हैं।
0: यस, हर कॉलेज में 4% सीट डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व की गई है, 5% रिजर्वेशन है डिसेबल लोगों का। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल हैं, हॉस्टल की प्रायोरिटी देखो, और उसमें जब 4% या 5% सीट रहता है तो जरूरी, तो हॉस्टल की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? अब होता ये है कि कुछ बच्चे फिर भी घर के पास के होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे हॉस्टल्स में अब क्या करें उसके लिए, तो जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और थोड़ा सा मार्क्स बेसिस ले लेते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बच्चे दिल्ली के होते हैं उनकी प्रायोरिटी बाद में होती है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो एनजीओस चला रहे हैं, जिनमें इन बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। परेशानी तो है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी सीट सारी चीजें एक तरीके से हो जाती हैं, कि सबको हॉस्टल मिल जाता है, सब कुछ हेवन नहीं है, लाइफ इज नेवर हेवन,
1: बट प्रयास तो करते रहना पड़ता है।
0: बट ऐसा नहीं है कि लाइफ इज हेल ऑल्सो, लाइफ इज ब्यूटिफुल।
1: यस, लाइफ इज ब्यूटिफुल। एंड अभी हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार,
3: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, हमारे रेडियो डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मैम, मैं दिल्ली से जाहिद बात कर रहा हूँ, दिल्ली से।
1: जी जी, जाहिद जी बताएं।
3: मैम से मेरे सवाल है कि मैं जो है 2001 में सर्टिफिकेट बना था, मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट 2001 में, आरपी पेशेंट हूँ मैं, तो 75% में बना हुआ था। अब जो बिल्कुल आई साइड जो है 1-2% ही रोशनी रह गई है, तो क्या ये दूसरा बन जाएगा नया? और दूसरा सवाल ये है मैम कि इसके मुझे फैसिलिटी क्या मिलेगी, वो बेनिफिट तो मुझे मिलता है जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, इसके अलावा जैसे मैं 32 साल से रेंट पे रहता हूँ, तो कुछ इसका कोई ऐसा है जैसे मकान मिल जाए कोई किसी लोन पे किसी पे, या कुछ आमदनी का सिलसिला बन जाए, जैसे कुछ हमें काम मिल जाए, कोई एजेंसी है या कोई कारोबार या कोई भी चीज इस तरह की जो हमारी इनकम बढ़ जाए कुछ।
1: इन्होंने जो बताया कि 75% इनकी डिसेबिलिटी थी और अब ज्यादा बढ़ गई है, तो डॉक्टर सुमन क्या दोबारा से ये रिवाइज किया जा सकता है?
4: जी बिल्कुल, ये दोबारा अस्पताल में जाके अपना सर्टिफिकेट रीअप्लाई करके और दिखा सकते हैं, अगर वो डिसेबिलिटी अगर वाकई
1: मेडिकल होता होगा इसके लिए।
4: बिल्कुल, दोबारा एक मेडिकल बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि अगर बढ़ गई है तो उसको जरूर रिवाइज किया जाता है।
1: और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, अभी डॉक्टर स्मृति ने भी बताया बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और जैसे अभी हमारे जो श्रोता है उन्होंने भी बोला कि क्या हमें कुछ काम मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बहुत जरूरी है और एक स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है छात्रवृत्ति मिल सकती है क्या, इस तरह के प्रश्न आते हैं। स्किल्ड ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो जब हम पुनर्वास पर बात करते हैं तो ये सारे बिंदु भी जरूर छूना जरूरी है। तो मुझे बताएं कि डॉक्टर स्मृति आपसे पूछूंगी कि इस तरह की जो सुविधाएं मिल सकती हैं या मिल रही हैं क्या सरकार की तरफ से।
0: या पहले मैं उन भाई साहब को जवाब देना चाहूंगी, हमें डीडीए की स्कीम्स में रिजर्वेशन मिलता है, पीएम आवास योजना में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और बहुत बार डिसेबिलिटी ग्राउंड पर अगर आपकी इनकम उसको मैच करती है तो घर फ्री के भी मिलते हैं, और आप उसमें बैंक्स के थ्रू पीएम आवास स्कीम के थ्रू पता करके उसको देख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको देखना है कि आपकी जो जॉब है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्वयं सहायता ग्रुप भी हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी हैं, बहुत सारे तरीके की चीजें हैं। आपको थोड़ा सा अपने एरिया में देखो, हम डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, मैं भी एक वुमन हूं, मैंने भी एक्सप्लोर की है जिंदगी, और उस तरीके से आप थोड़ा सा अपने घर के बाहर निकलिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना हाथ फैलाए, अपनी बाहें पसारे, आपका स्वागत करने के लिए, आपको समायोजित करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं।
1: जी, बहुत बहुत पॉजिटिव बातें डॉक्टर स्मृति यहाँ बता रही हैं, डॉक्टर सुमन बता रही हैं, और इस तरह से हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीजों का हमें सही जानकारी मिले तो हम ये सब चीजों को अवेल कर सकते हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे प्रशिक्षण के बारे में, अभी डॉक्टर सुमन से मैं फिर से पूछूंगी, लेकिन इस बीच में एक जो मैसेज आया है उसको मैं लेना चाहूंगी। उत्तराखंड कोटद्वार से नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, शालिनी मैम आपको नमस्कार, और दिव्यांग समाज के लिए उनके प्रशिक्षण, उन्हें सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना है, इसी बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी। तो ये प्रश्न भी आ गया हमारे श्रोता का।
4: जी बिल्कुल, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या है। क्योंकि अगर एक जरिया बंद हो जाता है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एग्जांपल दूं, अगर कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उनकी टांग चली गई है, तो अब उसको देखना पड़ेगा एजुकेशन लेवल क्या है या उनकी हॉबी क्या है, उसको हम वोकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पीएम दक्ष डीपीडब्ल्यूडी पोर्टल है, जिसमें दो बेसिकली डोमेन है, एक जो डोमेन है वो स्किल ट्रेनिंग के लिए है, दूसरा जो है दिव्यांग रोजगार सेतु है, जिसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पीडब्ल्यूडी जो पर्सन है वो किसी भी जॉब देने वाली संस्था के साथ जुड़ सकता है, अस्पताल में जाके भी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करवा सकता है, या वोकेशनल रिहैबिलिटेशन स्कूल्स हैं जो बेसिकली उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके दोबारा सक्षम बना के और कम्युनिटी में उनको वापस रीइंटीग्रेट करती है।
1: तो इस तरह के पोर्टल पे हम इंफॉर्मेशन होंगी,
4: बिल्कुल
1: उस इंफॉर्मेशन से आप उस चीज को अवेल कर सकते हैं। और एक मैसेज हमारे तक पहुंचा है, लिखने वाली है जानवी भारती, इन्होंने लिखा है मेरठ में रहती हैं, रेडियो डॉक्टर रोज ये सुनती हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरी विकलांगता है आंखों की और मुझे 40% विकलांगता है, क्या कोई स्मार्टफोन या फोन की सुविधा होती है जो हमें मिल सके, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके काम करने में और इन सब चीजों के लिए। तो इस तरह की कोई फैसिलिटी है डॉक्टर स्मृति?
0: यस, इस तरीके की फैसिलिटी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हमेशा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हमेशा लेके आते हैं स्कीम्स, और उसमें आपको फॉर्म भर के अपने डिसेबिलिटी यूडीआईडी के साथ अप्लाई करना पड़ेगा और वो आपको फोन देंगे, मिलता है, सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं आजकल।
1: तो सुविधाएं हैं जैसा डॉक्टर स्मृति बता रही हैं, लेकिन आपको सही जगह पर पहुंचना है। यहाँ पर एक गाना सुनेंगे, क्या कहेंगी डॉक्टर स्मृति? एक गीत आपकी पसंद का मैंने निकाला है, और मुझे लगता है डॉक्टर सुमन ने भी मुझे बताया कि ये गीत उन्हें भी बहुत पसंद है, मोनाली ठाकुर की आवाज में मोह मोह के धागे। तो ये गीत मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है, तो हम तीनों मिलकर पहले एक गीत सुनते हैं, लौटते हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
2: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी तो है, नमस्कार
1: जी। नमस्कार राजेंद्र जी।
2: जी मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से।
1: जी जी, आप अपना प्रश्न करें।
2: और दोनों विशेषज्ञ साहिबाओं को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार सबकी तरफ से। हाँ जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मेरा पहला सवाल ये कि देखिए, दिल्ली में जो है, दिल्ली में बसें चलती हैं और दिल्ली में विकलांगों के लिए बसों में अटेंडेंस भी अलाउ है और जो है पास भी अलाउ है, पर बसें पूरे हिंदुस्तान में चलती है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल, क्या ट्रेन में और हवाई जहाज में और ये जो मेट्रो चलनी शुरू हुई है, क्या इनमें भी अटेंडेंट और पास की सुविधाएं गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है क्या, इसके बारे में बताया कर चुकी है? और तीसरा सवाल मेरा है कि जो लोग बस हैंडीकैप होते हैं, कुछ लोग बाद में होते हैं, तो जैसे प्लेयर प्रोसीजर था कि आप उसके लिए आप जाके अस्पताल में हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाइए, तो तमाम उम्र काम करता था, तो अब क्या उसको रिन्यू करना पड़ता है 4-5 साल में, या फिर जो है वही कंटिन्यू पूरी लाइफ चलता है? ये कुछ मेरे सवाल है, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी प्रश्न करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जैसे इन्होंने भी कहा कि क्या फैसिलिटीज दी जाती है दिव्यांगों को, और आप कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर स्मृति?
3: या मैं ये कहना चाह रही थी कि सुविधा तो नहीं है, लेकिन हर मेट्रो स्टेशन पर जब आप घुसते हो तो वहां पर आप बता देते हो कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मेट्रो का स्टाफ स्वयं आपको असिस्ट करता है। आपके जाने से पहले मेट्रो स्टेशन का स्टाफ खड़ा रहेगा आपको रिसीव करने के लिए, और आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह की सवारी पर आपको बैठा के छोड़ेगा। तो इस तरीके की सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन ये वाली तो अटेंडेंट वाली सुविधा नहीं अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये जो रिन्यू कराने का कह रहे थे मैम, ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, लेकिन ये डिसेबिलिटी के पास इसमें जैसे टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आपके सर्टिफिकेट पर है तो उसको रिन्यू तो नहीं कराना पड़ता है।
1: जी डॉक्टर सुमन, आप बताएं, जैसे ये बोल रहे थे क्या अगर एक बार बन जाता है तो उसको रिन्यू भी कराना होता है क्या?
4: जैसे कि मैडम ने बताया, अगर लिमिटेड वैलिडिटी या टेम्पररी सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसकी अवधि उस कार्ड पे मेंशन होती है कितने समय के लिए कार्ड वैध है या वैलिड है। अगर परमानेंट है तो उसको रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी जी जी, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन कुछ और बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, कि जब हम दिव्यांग की बात करते हैं उनकी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम बात कर लेते हैं कि वो हॉस्पिटल में अगर वो पहुंचते हैं तो किस तरह की सुविधाएं उनको दी जाती है।
4: जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में जागरूकता काफी हद तक आ चुकी है, और भी आगे इसकी आवश्यकता है कि जागरूकता बढ़े और ये प्रोग्राम जैसा कि इस तरह की चीजों की बिल्कुल बेहद आवश्यकता है। अस्पताल में मैं आपको बताना चाहूंगी, दिव्यांगजनों के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड काउंटर होता है, जब वो घुसते हैं उनके लिए पार्किंग होती है, सबसे पहले गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग होती है, असिस्टेंस होती है। मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ, एक डिसेबिलिटी पार्किंग है, देन उनका एक अलग से काउंटर होता है, उनको बकायदा मे आई हेल्प यू से काउंटर से उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि उनको किस विभाग में जाके दिखाना है। सुगम में लिफ्ट होती है आजकल, विजुअली चैलेंज के लिए, हियरिंग वालों के लिए हर तरह की लिफ्ट जो है हर फ्लोर पे उपलब्ध है, ताकि वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें।
1: जी तो ये सुविधाओं की हमने बात की, पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर स्मृति हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्मृति ये बताएं किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं?
3: या एक तो मैं केयर गिवर भी हूँ, तो हॉस्पिटल आना जाना, क्योंकि मेरी बेटी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से हैंडल ट्रीटमेंट है वो, तो हॉस्पिटल आना जाना और बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत क्राउडेड होते हैं हॉस्पिटल्स, और पार्किंग तो बहुत दूर की बात आती है, तो उसमें आने में पहले प्रॉब्लम होती है। फिर मेडिसिंस जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का धन्यवाद, जिन्होंने QR कोड मेडिसिंस पर बहुत जगह पर अभी रिकॉग्नाइज कर लिया 300 मेडिसिंस पर, और मैं उम्मीद करती हूं कि आगे और सारे मेडिसिंस पर भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मेडिसिन लेना भी अपने आप में एक डिसेबल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कई तरह की एक ही साइज की होती है, उसको पहचानना और उसको सब कुछ करना बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब QR कोड या ऐसे एक्सेसिबल मेडिसिन और या हेल्थ केयर के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ही सुविधाएं हो जाती हैं। बहुत बार डॉक्टर्स एक्सरे या कोई भी चीजें नहीं समझ पाते हैं तो टाइम का भी ये रहता है तो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते हैं, लेकिन अवेयरनेस आ रही है, इसलिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्टर्स को भी बताना जरूरी है कि कैसे, या हेल्थ कर्मी को बताना जरूरी है, नर्स को, वार्ड बॉय को, कि एक डिसेबल को आप कैसे हेल्प करोगे, उसको किस तरह की जरूरत है, तो उससे ज्यादा सुविधाएं आएंगी हॉस्पिटल में। और सरकार इस तरफ अग्रसर है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोगों की ऐसे इनिशिएटिव के बाद सरकार और भी ज्यादा काम करेगी और सारी चीजों को हमारे हेल्थ केयर बहुत सारी पॉलिसीज भी बनी है, अभी काफी अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है, स्पेशली डिसेबल विथ विमेन विथ डिसेबिलिटी को लेके बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो सोचने में भी, अगर मैं बोलूंगी तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा।
1: जी, जी, जी। हम समस्याओं पर बात आज कर रहे हैं पर समाधान पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे?
4: जी बिल्कुल, मैं इनको कहना चाहूंगी कि इसके अलावा जब हम अस्पताल में जाते हैं, जैसे अस्पताल की मैं बात करूं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सारी इन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू।
1: जी, तो बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लगता है हमारे श्रोताओं तक तो पहुंची होगी। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली डॉक्टर स्मिति की, बहुत सारी जो QR कोड से जो ये दवाइयां परचेज की जा सकती हैं, इस पर कार्य चल रहा है, उस तरह का कार्य और आगे बढ़ता रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है, यश है, न्यू दिल्ली में रहते हैं, ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू आस्क व्हाट कैन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स डू टू रिड्यूस द स्टिग्मा एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी हम चाहते हैं जहां पर सबको समान अधिकार हो, तो ये अधिकार और सब कुछ सारी सुविधाएं सबको मिल सके, इसके लिए क्या बहुत जरूरी है, क्या हमें इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना चाहिए या कलेक्टिव वर्क करना चाहिए? बहुत कम समय है पर मैं आप दोनों से थोड़ा थोड़ा सा इस बारे में चाहूंगी।
3: या सबसे पहले तो इस तरीके की स्टिग्मा से लड़ने के लिए जो आज का इनिशिएटिव है वो शालिनी मैम को बहुत सारा धन्यवाद। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है हम सबको डिसेबल्स को इक्वल समझना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी को देखें, डिसेबिलिटी को बाद में देखें, तो स्टिग्मा अपने आप चला जाएगा। उनसे फ्रेंडशिप करें, उनकी जिंदगी में समझें, ये सोसाइटी के लिए जरूरी है कि उनके अलग से कॉलोनी ना हो, अलग से घर ना हो, अलग से वो एक दूसरे के साथ न रहें। हमें कोशिश करना चाहिए, हम सबको कोशिश करना चाहिए, हम डिसेबल भाई बहनों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम मोर ऑफ सबके साथ रहने की कोशिश करें और उनको अपने बारे में खुल के बताएं, खुल के अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और खुल के उसके समाधान के बारे में बताएं और हंसे खुशे से रहें। डिसेबिलिटी सबके पास है, किसी न किसी तरीके से उसको बस केटर करने की जरूरत।
1: बहुत अच्छी बात बोली। और डॉक्टर सुमन आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स?
4: बिल्कुल, मेरे भी यही है कि हमें डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोशल इंक्लूजन पे हमें ध्यान देना चाहिए, बेबी इट्स इकोनॉमिक और इन डे टू डे लाइफ, अगर हम उनको अपने से अलग नहीं समझेंगे दे विल बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, तो स्टिग्मा अपने आप चले जाएगा, दे विल नॉट कंसिडर देम स्पेशल, यू इंक्लूड देम इन सोसाइटी एंड वेलकम देम, क्योंकि देखिए सबकी भागीदारी से ही समग्र प्रगति संभव है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली और अब इसी तरह से हम मिलजुल कर रहें और कार्यक्रम आप सुनते रहिए और ये कार्यक्रम आपको बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। और आज का जो ये कार्यक्रम था वो विशेष हमने केंद्रित किया था दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके ऊपर, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। और हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर्स रही डॉक्टर सुमन बादल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ PMR VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर स्मृति सिंह हमारे साथ थी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों समय निकाल कर यहां आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
4: धन्यवाद।
1: और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया है और आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को दीजिए इजाजत, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार।
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर श्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इससे पहले प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के

0: मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया है। इसकी पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। इसके लिए रीवा के किसानों को 150 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य मिला। ये मूल्य स्थानीय बाजार भाव से अधिक है। देविका सिहाग, कितांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today I'm talking about upscaling. Upscaling के माध्यम से कंपनियां नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर समय और बजट खर्च करने के बजाय अपने मौजूदा कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर पैसे बचा सकती है। इसके अलावा मौजूदा कर्मचारी अपनी नौकरी से गारंटीकृत वेतन और आरामदायक कार्यस्थल के माहौल से ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी अब सशुल्क छुट्टियां, किफायती स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर प्रशिक्षण जैसे लाभों की उम्मीद करते हैं। कर्मचारियों को अपस्किल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके संगठन कर्मचारियों को ये संदेश देते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाता है और कंपनी के साथ उनका भविष्य समर्पित है। नौकरी की भूमिकाएं और उनकी आवश्यकताएं तेजी से बदल सकती हैं। कर्मचारी अपनी कंपनी में विकास के अधिक अवसरों की अपेक्षा करते हैं। ये कौशल अंतराल को कम करके किसी संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धित बनाने में सक्षम है। इससे कौशल अंतराल को भरने के लिए कंपनी के बाहर से भर्ती करने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे कर्मचारी संतुष्टि बढ़ती है, प्रेरणा, प्रदर्शन और मनोबल बढ़ता है। इससे कर्मचारियों की प्रतिधारणा क्षमता बढ़ती है। नियुक्तियों पर रोक और नौकरी बाजार में तंगी का मतलब है कि संगठनों को आवश्यक भूमिकाओं के लिए नई प्रतिभाओं को अपने यहाँ ही खोजना होगा, जो कि कौशल उन्नयन से संभव होता है। दोस्तों, आप हमें कॉल

या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। कौशल अंतराल की पहचान करें। अपस्किलिंग रणनीति विकसित करते समय कंपनियों को सबसे पहले अपने संगठन में मौजूद कौशल अंतराल की पहचान करनी चाहिए। ये कदम व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके अपस्किलिंग प्रयास उनके कार्यबल की जरूरतों के अनुरूप हो। इसके बाद कंपनियों को अपस्किलिंग प्रयासों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए बाजार में सबसे नए उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है, हालांकि ये विकास दीर्घकालिक रूप से व्यवसाय की मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए एक संगठन को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वे दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाने के लिए अपने मुख्य कौशल को कैसे सुधार सकता है। हालांकि उद्योग के रुझाने के साथ बन रहे और नई तकनीक का उपयोग करना अभी भी आवश्यक है ताकि कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सके। एक बार कौशल अंतराल की पहचान हो जाने के बाद व्यवसाय उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निर्माण और चयन करना शुरू कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक सार्थक हो। ये कुछ कारकों को निर्धारित करता है, जैसे क्या वॉल्यूम प्रशिक्षण सत्र की आवश्यकता है या फिर एक पर एक पाठ अधिक लाभदायक होगा, क्या प्रशिक्षण आंतरिक रूप से किया जा सकता है या किसी बाहरी शैक्षणिक संस्थान को नियुक्त करने की आवश्यकता है, किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक सार्थक है, मार्गदर्शन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सत्र या उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम, कौशल उन्नयन की योजना तैयार करना। दोस्तों, अब मैं आपको अपस्किलिंग के लाभ के बारे में बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। अपस्किलिंग में मौजूदा कर्मचारियों को नई नौकरी कौशल सिखाने में मदद मिलती है, कंपनी को नौकरी के आवेदकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है और कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाता है। इसके अलावा जबकि अपस्किलिंग कार्यक्रम महंगा है, वे एक मजबूत बॉटम लाइन और निवेश पर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। श्रमिकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण के अवसर बनाना अक्सर कार्यस्थल की समस्याओं को संबोधित करने की तुलना में कम खर्चीला होता है। निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने से कर्मचारी प्रतिधारण दर भी बढ़ती है, जिससे टर्नआउट कम होता है और भर्ती और ऑनबोर्डिंग लागत कम होती है। कर्मचारी जुड़ाव से सुधार करता है, संभवित और मौजूदा कर्मचारी अपने नौकरियों में पेशेवर विकास और प्रशिक्षण के अवसर चाहते हैं और वे ऐसी भूमिकाओं की तलाश करेंगे जो ये विकल्प प्रदान करती है। अपस्किलिंग इन कर्मचारी मांगों को पूरा करता है, जैसे कर्मचारी उत्पादकता को अनुकूलित करता है, कर्मचारी जुड़ाव में सुधार अंततः उत्पादकता बढ़ाता है। साथ ही अगर कर्मचारी उस तकनीक को नहीं समझते हैं जिसके साथ वे काम करते हैं तो वे अपनी नौकरी में उत्कृष्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कर्मचारियों को नई तकनीक में अपस्किलिंग करना उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अब रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के बीच अंतर आप समझेंगे आज के लंबे प्रोग्राम में चेतन के साथ। अपस्किलिंग का मतलब है मौजूदा कर्मचारियों को अतिरिक्त कौशल प्रदान करना। ये नए कौशल किसी मौजूदा भूमिका को बेहतर बनाने या उसके विस्तार करने या किसी व्यक्ति के करियर पथ में अगले चरण के लिए योग्य बनने के लिए सीखा जाता है। अपस्किलिंग का एक उदाहरण एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो सकती है जो अपने डेवलपर्स को एक नई भाषा की प्रशिक्षण देती है जिसका उपयोग वे नए उत्पाद विकसित करने के लिए करेंगे। दूसरी ओर रीस्किलिंग का मतलब है किसी असंबंधित भूमिका के लिए नए कौशल सीखना या करियर में बदलाव करना। रीस्किलिंग के लिए अक्सर किसी कर्मचारी को किसी अलग क्षेत्र में डिग्री या प्रमाण प्राप्त करने के लिए कॉलेज या ट्रेनिंग में वापस जाना पड़ता है। रीस्किलिंग का एक उदाहरण है
निर्माण श्रमिक हो सकता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए स्कूल वापस जाता है। अपस्किलिंग कर्मचारियों को उनके करियर में एक रेखिया पथ के लिए विकसित करती है, जबकि रिस्किलिंग का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति के करियर के लिए पार्श्व आंदोलन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का कार्यक्रम अपस्किलिंग के बारे में। With this, we come to the end of today's Lambhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedback amc1@gmail.com।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, आपके साथ साथ में कौन सा वाला प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम का नाम है आप अल्फा जन की बात कर रहे हैं। जब अल्फा जन की बात करते हैं तो अल्फा जन के अंदर ये समय है अपने आप को डिटॉक्स करने का। सो लेट्स डिटॉक्स योरसेल्फ। आप अब ये सोच रहे होंगे कि डिटॉक्स करने के क्या फायदे हैं? अरे साहब, सबसे पहले मन में अगर कोई बात जब आ जाए ना तो उसके दूर करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस मन के अंदर आई हुई बात को दूर नहीं किया गया तो भाई साहब मैं कहता हूं कि आपको वो अंदर ही अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में करता रहेगा और फिर आपको वो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं डिटॉक्स तुरंत की तुरंत कर दिया जाए, यानी कि उसकी सफाई जरूर कर दिया जाए। वैसे तो डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सबसे अच्छा कोई डिटॉक्स करने का तरीका मुझे समझ में आता है या आपको समझ में आता है तो उसको मेरे हिसाब से सेल्फ मोटिवेट कहते हैं। अगर आपको ये तरीका आपने अपना लिया ना तो साहब जिंदगी भर के लिए आपको बहुत कुछ आसान आसान लगने लग जाएगा। तो आज के सर्वा जन के अंदर मैं यहां पर आपके साथ आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला, रेडियो पर जानकारी देने के लिए आपके साथ में। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपने आप को लेट्स डिटॉक्स।

अल्फा जन के अंदर प्रोग्राम के अंदर मैंने भी कुछ कुछ सीख लिया, जैसे ये जो लास्ट में कोरस के अंदर प्रोग्राम मिला, दिन्ना दिन्ना मैं देने सीख लिया, अब इसके साथ साथ सीखने की जरूरत क्या रह गई, है ना। जब मन में ये वाला सवाल आ जाए कि अब क्या जरूरत रहेगी ये सब सीखने की, हमें सब कुछ हमें पता है, क्या कहा, जब सब कुछ पता है तो साहब फिर तो इसका मतलब आप तो सबसे ऊपर आ गए मन में। लेकिन जब बात हम कहते हैं ना कि अगर आपके मन में ये अगर बात है, हम डिटॉक्स करने की अगर बात करें तो साहब जब डिटॉक्स करने की बात आती है मन में बहुत सारे मैल सच में होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं साहब हमारे मन में कुछ नहीं है, साहब हम तो बिल्कुल ठीक है। अगर मन में कुछ नहीं है तो फिर सोच विचार किस लिए। इसलिए कहते हैं सबसे अच्छा जो बेहतर तरीका है खुद को ये जानने का कि आप कहां पर सही हैं और कहां पर गलत हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा सवाल आप अपने आप से खुद से करें कि आप अपना बेस्ट कहां पर देते हैं और कहां पर आपकी खराब वाली परफॉर्मेंस आ रही है। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपको अपने आप को बेहतर आकलन करने से यह समझ में आएगा कि बेस्ट और वर्स्ट वाला जो सीन है वो कहां पर आ रहा है। क्योंकि मेरा खुद का एक ये मानना है कि हम अपने आप से सबसे अच्छे से सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, और मेरा मानना है कि साहब अपने आप से अच्छा जज करने वाला कोई भी नहीं होता। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जब भी आप बच्चों से परीक्षा में पूछ लो घर आते, बेटा एग्जाम कैसा हुआ, अरे क्या बताऊं पापा, अरे क्या बताऊं मम्मी, एकदम बढ़िया हुआ है, जबकि बच्चे को सच में अपने आप में पता होता है कि एग्जाम कैसा हुआ है, कौन कितने पानी में है, ये पता होता है। अगर आपको कोई कह दे कि आपको भाई साहब 1 किलोमीटर है ये 1 मिनट में पार करना है, नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं कर दूंगा, मैं तेज भागता हूं, नहीं साहब, थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू कीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी, अपने आप को डिटॉक्स करने में सच में बहुत बहुत बहुत मदद मिलेगी। आगे आपको ये बताऊंगा कि मन के अंदर का जो एक इंसान है उसे कैसे बाहर निकालें, है ना। क्योंकि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आपने वाली बात सुनी होगी, तो क्या है बताएंगे आपको।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

फिर से स्वागत आपका प्रोग्राम अल्फा ज़ेन, और अल्फा ज़ेन के अंदर हम बात कर रहे हैं लेट्स डिटॉक्स की, यानी कि डिटॉक्स करने के कितने सारे ऐसे तरीके हैं, आप ये खुद जानते भी हैं, कुछ अपनाने से डरते हैं और कुछ ना ना ना करते रहते हैं। देखिए, शरीर के अंदर की जो सफाई है ना, अगर आप योगा करने जाते हो तो योगा वाले गुरुजी, योगा वाले जो सर जी हैं, वो बताते हैं अंदर ऐसे लंबी सी सांस लीजिए। लंबी सी सांस होती है, वो कहते हैं फेफड़ों से उनको जो बिल्कुल अच्छी वाली जो हवा मिलती है उनको, वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपको लगता है पेट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो दो तीन दिन तक आपको बोला जाता है कि भाई आपको हल्का हल्का वाला खाना खाना है। इसका मतलब ये जानते हैं कि हल्का खाना खाने से आप, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, जो पेट के अंदर कुछ गड़बड़ होगा वो सब साफ हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ कुछ डॉक्टर्स, अगर आप, भगवान न करे कभी आप ऐसे अस्पताल में अगर भर्ती हो जाते हैं, तो उस दौरान आपको लिक्विड डाइट दी जाती है, ताकि कुछ ऐसा आपके जो लिक्विड डाइट्स के, वो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब ऐसा ही जो हमारी जो नई जनरेशन है उनके साथ भी है। कहा जाता है कि जब आप देखेंगे, जब दशहरा आता है, तो उस दशहरा के दौरान में बहुत सारे सोशल साइट्स पर ये चलता है कि मन के अंदर की आप अपने रावण को मारिए, अपने अंदर जो आपकी बुराइयां हैं उनको मारिए। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। लेकिन कोई व्यक्ति कहता थोड़ी है ये कि हमारे अंदर कोई बुराई है, हर कोई इंसान अपने आप को अच्छा मानता है। इसका तरीका क्या है साहब? अच्छा तो हर कोई इंसान है ही, क्योंकि जो ईश्वर की ये जो रचना है ये सच में बहुत अच्छी है। लेकिन हम कुछ कुछ कुछ सोच सोच कर अपने हिसाब से, ना जी ऐसा ना जी वैसा, सब गड़बड़ गड़बड़ हम कर देते हैं। तो जब गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए इसकी सफाई बेहद जरूरी है। सो डू योर सेल्फ एंड डिटॉक्स योर सेल्फ, यू कैन गेट मैनी मैनी मैनी एम्बिएंट रिजल्ट्स। तो इसलिए अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए बेटर होगा कि आप अपने आप को डिटॉक्स करके दें।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6

0: भोपाल बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

भैया जी प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन में हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स करने की, अपने आप को कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं। अब साहब देखिए, बात मन में जब आती है ना कि साहब ये भी कर लो वो भी, यानी कि इच्छाएं बहुत सारी हैं मन में, आज ये कर लें आज वो कर लें, और इस तरह की इच्छाएं तो साहब टीनेज वाली जो उम्र होती है ना बहुत ज्यादा आती है। आज जैसे ही कोई फिल्म देख ली, मतलब देशभक्ति वाली, तो फौजी बनना है साहब। देखा कि नहीं ये नहीं भाई, फौजी नहीं बनना। अब ऐसा करके डॉक्टर वाली फिल्म देखी, डॉक्टर बनकर मुझे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस करने हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों की जान बचाऊंगा। फिर अगले ही पल कुछ और देख लेगा, फिर वो बनना है। यानी कि हर घंटे के बाद ये जो इच्छाएं हैं ना, ये अपने आप बनती हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ती रहती हैं, वो प्रबल होती रहती हैं। फिर आप मम्मी पापा से कहते हो मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जनरेशन के अंदर वो पेशेंस वाला जो हिसाब है ना, वो नहीं है साहब। अब अपने आप को इसको हम कैसे सही कैसे कर सकते हैं? सही करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जिस भी उम्र में हो, अगर मैं कहूंगा कम से कम आप 10th तक तो आप पास कर लीजिए। विदेश के अंदर तो कितने सारे ऐसे स्कूल्स हैं आप देखेंगे साहब, वहां तो एडमिशन्स ही 6th क्लास से होते हैं। वो कहते हैं साहब 5वीं क्लास तक के बच्चों को अपने पास घर पे रखिए, घर पे पढ़ाइए, घर पे सिखाइए। हम तो असलियत में जो पढ़ाई होती है यहां से पढ़ाते हैं, यानी कि वो सिखाते हैं तब तक, और फिर वो जब स्कूल्स के अंदर से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपको अपने बर्तन भी खुद साफ करने हैं, कपड़ों की तय भी लगानी है, सब कुछ। यहां तो आप समझ जाइए साहब, 5 बार 10 बार जब तक आवाज ना लग जाए, मजाल नहीं भाई साहब कि वो काम हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर एक काम कर दिया तो कहा जाता है देखो मैंने कितना काम कर दिया, है ना। जनरेशन से अब अपने आप को हम कैसे हम सोचें कि हम कहां सही हैं कहां गलत हैं। A4 साइज का पेपर लेना है, उसको लैंडस्केप कर दीजिए, उसको बीच में से एक लाइन डाल दीजिए, अपने आप के हिसाब से जितना आप अपने आप को जानते हो, बिना इसके अंदर कोई भी झूठ लिखे, सच और सच लिखना है बस। उसके अंदर आप देखिए कि अपना आप बेस्ट कहां दे सकते हैं, उल्टे हाथ की तरफ लिखिए कहां पर कमी आ रही है, सीधे हाथ पे लिख दीजिए। दोनों के फायदे, अगर मैं ये करता हूं तो यहां तक जाऊंगा और ये नहीं करता हूं तो यहां के जाऊंगा, इसके परिणाम ये निकलेंगे, इसके दुष्परिणाम ये निकलेंगे, आपके हाथ में चीज आ जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ हम ना करने के बजाय हम दूसरों पर आरोप, तो उससे क्या होता है, जो मन के अंदर वाली जो चीजें हैं ना वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। और फिर जब हर किसी घर के अंदर बात चलती है, एक दिन जब बम फटेगा पता चलेगा, और एक दिन जब बम फटता है तब बहुत सारी बातें, मैंने उस समय ऐसा कहा था, तुमने उस समय ऐसा कहा था, यही सब चलता रहता साहब। इसलिए अपने आप से सवाल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अपने आप से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। ठीक है ना।

दीदी ने कही कि सीधे पॉइंट पे आओ ना, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि भाई हमारा जाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि ये शाहिद कहेंगे प्रोग्राम आपके साथ में सिटी लाइट, उसके बाद में निखिल वर्मा आएंगे लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, उसके बाद में वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा सैटरडे सिजलर्स का, सुहासिनी आपके साथ में होगी, विनीता बेदी आपकी याद आती रहे, फिर उसके बाद होगा वेस्टर्न म्यूजिक का इन द ग्रूव, सुहासिनी आपके साथ में, विनीता बेदी प्रोग्राम करेंगी रंगे महफिल। ठीक है साहब, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो अल्फा जैन वाला प्रोग्राम था, अपने आप को डिटॉक्स कैसे करें उसके बहुत सारे तरीके आपको पता हैं, और मैं तो उम्मीद से आपको यही कहूंगा कि अगर आपको वो तरीके अपनाएंगे, अपने आप को कागज पर उतार के लेकर आएंगे, तो बहुत कुछ आप यकीनन पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत अपने आप को खुद को करनी पड़ेगी, अपने आप से खुद से सवाल करना होगा, क्योंकि जब आप सवाल खुद से करते हैं ना साहब, मैंने कहा ना आप अपने आप को खुद जानने के लिए इससे बढ़िया बेहतर कोई जज है ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को भली भांति जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितने नहीं। इसलिए अपने मन के अंदर के मैल को बाहर निकाल दीजिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लोगों की बात भी अगर सुनेंगे, मम्मी पापा की बात सुनेंगे, क्या कोई भी ऐसा मम्मी पापा माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बुरा चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर साहब आप भी मम्मी पापा जरूर बनेंगे, तो आप उस समय अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सुनते रहिएगा आकाशवाणी रेनबो, आपके लिए लगातार 24 घंटे कई सारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको मनोरंजन तो कराते ही हैं, आपको जानकारी भी बेहतर देते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ में, बाकी अगली जो आवाज आएगी वो सिटी लाइट में शाहिद भाई की आपके साथ में होगी। बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: প্রিয় শ্রোতা, এ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই সৰ ফিৰোজী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a three-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration views India as one of the U.S.'s closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. The 135th episode of the monthly radio program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. The Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. Treasurer of the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, Swami Govind Devgiri Maharaj, today issued a statement on this issue. The statement said, "The resignations will be discussed in the next meeting." It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust in this letter said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed an FIR has been registered in the donation related case based on the SIT's interim report with legal proceedings underway. In Tamil Nadu, the MDMK party led by Vaiko has ended its 9-year alliance with the DMK. The party general secretary Vaiko led a general council meeting in Chennai today, during which a general resolution was passed for withdrawal from the alliance. The MDMK alleged that attempts were made to weaken the party. The MDMK has 2 MLAs in the assembly. The Intermeteorological Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. In US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan have reached the semi-finals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Zhuofu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible all-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Isha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start. Puneet Suresh and Deepthi Raj Aditi then extended India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. India are placed in Group C alongside Chinese Taipei, Kazakhstan and the Philippines. Their next match against Chinese Taipei will decide the group winner And with that, we end this news bulletin.
0: বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। এতিয়া আগবঢ়াইছো জেউতি পাঠকৰ কথিকা, ৰেডিঅ' আৰু আমাৰ জীৱন।
4: গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰী জেউতি পাঠকৰ কথিকা ৰেডিঅ' আৰু আমাৰ জীৱন পাঠ কৰিছে স্নেহা পাঠকে।
5: ৰেডিঅ' বুলি ক'লেই আকৌ এবাৰ তাহানিৰ দিনবোৰলৈ মনত পৰে। ৰেডিঅ' আছিল আৱেগ, ৰেডিঅ' আছিল মোৰ নিঃসংগ ক্ষণৰ লগৰীয়া। এই যে সৰুতে স্কুলৰ পৰা আহিয়েই ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ ৰেডিঅ' শুনাত, এফালে মায়ে আলপৈচান ধৰি ভাত খুৱাই দিছিল, আনফালে ৰেডিঅ' বাজি আছিল। দেউতাই সদায় পুৱা উঠিয়েই, লগতে ককাৰ প্ৰিয় আছিল ভক্তিমূলক গীত, আৰু সেই গীতবোৰ বিচনাত শুই শুয়ে শুনাৰ অভ্যাস আছিল মোৰ। ৰেডিঅ' শুনাৰ কাৰণে কাজিয়া লাগিছিল কেতিয়াবা। দেউতাৰ যদি প্ৰিয় আছিল বাতৰি, মোৰ এফালে গীত, নাটক ইত্যাদি ইত্যাদি। জোনাত নিশা তৰাভৰা আকাশৰ তলত ঢাৰি পাতি আইতাৰ কোলাত মূৰটো গুজি ৰেডিঅ' শুনা এক প্ৰকাৰৰ অভ্যাস আছিল তেতিয়া। দিনবোৰ সুকীয়া আছিল, তেতিয়া স্মাৰ্টফোন হাতে হাতে নাছিল, ইমান জটিলতাও নাছিল। কিমান যে স্মৃতি জড়িত সৌ ৰেডিঅ'টোৰ সৈতে! শৈশৱবোৰ তেনেকৈয়ে উকুলিল, ৰৈ থাকিল মাথো স্মৃতি। নাটক, গীত, কল্পতৰু আদি কিমান যে অনুষ্ঠান শুনিছিলোঁ, কিমান যে স্মৃতিৰ ৰেঙনি আজিও জিলিকি উঠে চকুৰ আগত। এয়া আকাশবাণী, কি যে মধুৰ সেই বাক্যশাৰী, কিমান যে আৱেগ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আজিও, সেয়া সময়ে জানে। ৰেডিঅ'ৰ সৈতে সম্পৰ্ক নোহোৱা হৈ পৰিছিল প্ৰায়, কিন্তু ৰেডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ সেই সম্পৰ্ক এতিয়া প্ৰায়ে শুনো, অনুভৱ কৰোঁ। পুৰণিকলীয়া দিনবোৰ, সময়বোৰ কিমান যে মধুৰ আছিল! ৰেডিঅ' এক আৱেগ, ৰেডিঅ' নষ্টালজিয়া। আজিকালি আধুনিকতাৰ বান্ধোনে মানুহবোৰক এনেকৈ বান্ধি ধৰিলে যে সেই বান্ধোনৰ পৰা মুক্ত হোৱা এতিয়া কঠিন। বহু লোক এতিয়া টিভি, মোবাইল গেমত ব্যস্ত, তথাপিও ৰেডিঅ' আজিও আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে মাত খাই আছে, আমাৰ জীৱনৰ লগত, আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ লগত। আজিও প্ৰিয় ৰেডিঅ', ৰেডিঅ'ই আজিও আমাৰ জীৱনত এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে, ৰেডিঅ'ৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও বিদ্যমান হৈয়ে আছে। আচলতে সময়ৰ লগে লগে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ৰেডিঅ'ই এক বিশেষ খলকনি তুলিছে। যদিও টিভি, মোবাইলৰ যুগ এতিয়া, আজিকালি মোবাইলতে আমি ৰেডিঅ' বাৰ্তা আৰু ভাল ভাল ৰেডিঅ' সম্বন্ধীয় বা বাতৰি, গান, কথা ইত্যাদি শুনিবলৈ পাওঁ, সময়ৰ লগে লগে, যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটে বা ঘটিছে। ৰেডিঅ'ৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও কিমান বুলি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয়, কিন্তু এই প্ৰশ্নৰ আঁৰৰ উত্তৰত এটাই কথা, পুৰণিক পাহৰি আমি কেতিয়াও নতুনক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰেডিঅ' আমাৰ চিনাকি, প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ কথাও এই ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ। এটা সময় আছিল যেতিয়া ৰেডিঅ'ৰ বাহিৰে মানুহৰ আন কোনো মাধ্যম নাছিল, ৰেডিঅ' অবিহনে য'ত আমি জানিব পৰা নাছিলোঁ বৰ্তমানৰ কথা। ৰেডিঅ' আছিল এক আৱেগ, ৰেডিঅ'ৰ সেই প্ৰসাৰতা তেতিয়াও আছিল, আজিও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। কেৱল ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব। তথ্য প্ৰচাৰৰ আটাইতকৈ সহজ আৰু জনপ্ৰিয় মাধ্যম হ'ল ৰেডিঅ'। শৈশৱৰ স্মৃতি, বৰ্তমানৰ ৰূপক এটি দিশ দিয়া মাধ্যম ৰেডিঅ'। ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি যি ভালপোৱা সেয়া অসীম, কবিতা, কথিকা, গল্প সংকলনৰ প্ৰচাৰৰ একমাত্ৰ সহজ মাধ্যম ৰেডিঅ'। ৰেডিঅ' বাৰ্তা আৰু ভাল ভাল অনুষ্ঠানৰ এক বিশেষ খলকনি তুলিব পৰা আহিলা। শৈশৱৰ দিনবোৰৰ ডায়েৰীৰ পাত লুটিয়ালে গম পাওঁ ৰেডিঅ' আমাৰ জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য মাধ্যম। দৰাচলতে প্ৰায় বহু বছৰৰ আগত ৰেডিঅ' সকলোৰে ঘৰত নাছিল, ৰেডিঅ' থকা কথাটো এক প্ৰকাৰৰ ডাঙৰ কথা আছিল। ৰেডিঅ'ৰ ভূমিকা আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট আছে, এয়া এক মাধ্যম নহয়, আচলতে ৰেডিঅ' বুলিলে এক বুজাব নোৱাৰা আৱেগ জড়িত হৈ আছে। মানুহৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ এই ৰেডিঅ'। ৰেডিঅ' অবিহনে আমি শূন্য।

0: ভজন শুনিলে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পিছতে 8:45 সমাচাৰ সন্ধিয়া 9:00 নিউজ এট নাইট আৰু 9:15 স্পটলাইট ডিউনিকেনৰ পৰা ৰিলিজ কৰিব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধিয়া কে সাথ মই সৰ ফিৰোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
3: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. So MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
4: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
6: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco Demer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special gesture, Prime Minister Modi handed over the Made in India fast patrol vessel to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and security of Seychelles. Prime Minister Modi will be the guest of honor at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. He is the first ever Indian Prime Minister to attend the National Day celebration of Seychelles. Akshat Vaidyan, Akashwani News.
7: Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence, and its contribution to peacekeeping, maritime security, and multilateral diplomacy. Indian Navy's indigenously built survey vessel large INS Ikshak reached Port Victoria in Seychelles as part of her operational deployment to the Southwest Indian Ocean region. The Defence Ministry said the visit coincides with the 50th National Day celebrations of Seychelles. During the port call, INS Ikshak will participate in the National Day celebrations and engage in a series of professional interactions with the Seychelles Defence Forces aimed at enhancing maritime cooperation and interoperability. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. The 135th episode of the monthly radio program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Ram Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned on moral grounds following the temple donation embezzlement case. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged their resignations. Treasurer of the Trust today issued a statement on this issue. It said the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The Trust said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram Temple. It also confirmed that an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report with legal proceedings underway. Union Home Minister Amit Shah chaired the District Development Coordination and Monitoring Committee Disha meeting in Gandhinagar today. Gujarat's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi was present in the meeting. The minister reviewed the implementation of various central flagship schemes. He ordered a contingency plan to tackle the delayed monsoon and directed officials to set up new cluster schools for every 3 to 4 villages to curb the school dropout rate among girls. Earlier, the Home Minister launched Bharat Taxi in Gujarat. He said the country's cooperative ride-hailing platform Bharat Taxi will be expanded to 500 cities and towns across the country over the next 2 years. A major paper leak involving the Maharashtra teacher eligibility test TET was foiled in Bhiwandi a day before the scheduled examination with the arrest of 3 alleged members of a paper leak racket. Police said the accused had brought the TET question papers from Delhi and were allegedly preparing to sell them in a deal worth around 1.5 crore rupees. Acting on a tip-off, the Bhiwandi police laid a trap and apprehended the 3 accused before the transaction could take place. Police recovered mobile phones, cash and 4 sets of TET question papers. Officials from the Maharashtra State Council of Examination confirmed the seized question papers matched the original question papers. A case has been registered at the Bhiwandi police station and further investigation is underway. The State Council of Examination has postponed Sunday's TET examination. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation stone for 2 major electronics manufacturing projects worth 6,750 crore rupees in Jewar, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said Jewar is poised to emerge as one of India's leading hubs for electronics and semiconductor manufacturing in the coming years. Explaining the significance of the projects, the minister said the facilities would manufacture advanced multi-layer printed circuit boards, PCBs, one of the most critical components of modern electronic devices. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with their UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK Partners in Progress Business Plenary in London. The Ministry of Commerce and Industry said the plenary was attended by leading industry representatives from both countries who welcomed CETA as a transformative framework for strengthening bilateral trade and investment. The discussions highlighted the agreement's potential to promote long-term investment, technology partnerships, innovation, resilient supply chains, and deeper economic cooperation between India and the UK. The fragile ceasefire brokered 2 weeks ago to end the four-month conflict in West Asia is under mounting pressure after fresh retaliatory strikes between the United States and Iran over the past 48 hours. The latest escalation began on Thursday with an Iranian attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz, prompting a U.S. response. Both sides accuse each other of violating the interim agreement, raising fears for ongoing diplomatic efforts. Bahrain reported a drone attack today, calling it a flagrant violation of its sovereignty, while a strike was reported near Erbil in northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatieh area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. We have more from our West Asia correspondent.
8: Maritime security agencies are raising alarm bells. Britain's UK MTO reported that a tanker struck on Saturday sustained damage to its bridge with all crew members reported safe. The Joint Maritime Information Centre, which coordinates naval protection of shipping lines, has elevated its security threat level in response to recent incidents. Iran's Revolutionary Guard Corps claimed that they fired warning shots at vessels using channels not approved by Tehran, suggesting the Islamic Republic is reasserting control over the world's most critical energy shipping corridor, a route that has been begun reopening after months of disruption. At the heart of the escalation is a breakdown of mutual compliance. Iran has accused United States of failing to uphold the ceasefire, particularly by not sustaining promised restraint in Lebanon. Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
7: A strong earthquake of 6.2 magnitude struck the Hindu Kush region of Afghanistan this evening at around 7:04 p.m. Tremors were felt across India, Pakistan, China, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan. Shocks were also observed in several parts of North India, including Delhi NCR, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Haryana. Talking exclusively to Akashwani News, scientist, National Center for Seismology, Sanjay Kumar Prajapati said the earthquake was moderate in nature and the damage near the epicenter is expected to be very little.
9: The tremor is widely felt across the northern India, including Delhi NCR, Chandigarh and Srinagar. And if you see, the intensity is the moderate near the source zone region, that is zone, basically intensity is 4. And because it is deep focus earthquake, the shake was over a broad region. But near to the epicenter, the damage is expected is very limited.
7: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Vidarbh, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. In US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikant defeated Chinese Taipei's Liao Shuo Fu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durgaya Isha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova. 11-5. Puneet Suresh and Deepthi Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alisa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.